0: दिलियाली हमाला दिले मेले ई खाती हाले हमाला दिलियाले खातियाला एक एक दिलियाला हाले वेले वसुते बड़ा खडा वाली बाहे मेले ले थेमा खातिला दिले मेला सोए नवतल दिन अशुते बल येशु स्वास के नाम में बोले आऊ
1: थेमा खातिला रे तेरे बे
0: ई हमाला के दियाले हमा तेरे
1: बे दे दे नवा खातिला हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केतेली हा मेले मा थिलिया ले ओबरा सुदी वेवा स्वामी इन वार्स ओबान सी उदाउ करन ने किने